मुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस तरह तुझे किताब से मुमकिन नहीं फरार।

0: शायरी और जिंदगी के राज, हवा की लहरों से बन के आवाज, ये है प्रोग्राम चराग। पेश किया जा रहा है हर जुमा शाम 7 से 8।
1: From the studios of Inspire FM, the time is now 8:30.

दिलों की आंख मचोली है। कभी सूरज अपनी किरणें बिखेर देता है और कभी बादल नरमी की चादर तान लेते हैं। ऐसे हसीन मौसम में हम सब मिलकर अपने रब की हमद और अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पेश करने के लिए हाजिर हैं। सामीन कराम, ज़ुल्हिज्जा के मुबारक अय्याम अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहे हैं और अब हज के मुबारक सफ़र से वापसी के काफ़िले भी अपने अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। कितने खुश नसीब हैं वो लोग जिन्होंने बैतुल्लाह का तवाफ़ किया, मैदान अरफात में दुआएं मांगी और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पेश किया। अल्लाह ताला इनके हज और इबादत को शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए और हम सबको भी अपने घर और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर की हाज़िरी नसीब फ़रमाए।

या अल्लाह, जिस तरह तूने अपने बंदों को इस साल अपने घर अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर की हाज़िरी नसीब फरमाई, हमें भी जल्द यह सआदत नसीब फरमा। सामीन कराम, अपने पैगामात, दुआओं और हज मदीना की यादें हमारे साथ शेयर करते रहिए। अगर आप या आपके अहले खाना हाल ही में हज से वापस आए हैं तो हमें ज़रूर बताइए कि मदीने से रुखसत होते वक्त दिल की क्या कैफियत थी। अभी आपके समातों की नज़र, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं।

अगर आप इस वक्त ल्यूटन, डनस्टेबल, लेटन बजट या दुनिया के किसी भी हिस्से से बज़्म नात सुन रहे हैं तो अपने पैगामात ज़रूर इरसाल कीजिए। हमें बताइए कि आप किस इलाके से प्रोग्राम सुन रहे हैं और आज की महफ़िल का कौन सा कलाम आपके दिल को छू गया है।

मकसद ये था कि तमाम तहकीक एक वीकेंड में किसी ऐसे मुसलमान के सामने मैं पेश करूं जो जिसका अरबी में कोई बैकग्राउंड नहीं है, उसको बिल्कुल अरबी नहीं आती, उसको बिल्कुल तफसीर का कोई इल्म नहीं है, लेकिन उसने कुरान का तर्जुमा खोला और पढ़ना शुरू किया, उसको कन्फ्यूजन हुई कि यह क्या हो रहा है, इस किताब के अंदर क्या हो रहा है। और मैं उसके सामने ये बात वाजे करना चाह रहा हूँ कि मैं इस तहकीक के बाद इस नतीजे पर कैसे पहुंचा कि ये एक इंसान के लिए मुमकिन है ही नहीं, ये कलाम इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। अब जो शुरू से बचपन वाला दावा मैं सुनता आ रहा हूं ना कि ये कुरान इंसान के लिए इस किस्म का कलाम कहना मुमकिन नहीं है, उसकी बुनियाद थी कि मुझसे बड़ों ने कहा है, मेरे वालदैन ने कहा है, इमाम मस्जिद ने कहा है, मैंने बार बार ये बात खुतबों में सुनी है, मैंने मान ली, मेरे पास उसकी अपनी कोई ज़ाती दलील नहीं थी, किसी की सुनी हुई बात मैंने मान ली। लेकिन अगर मैं सिर्फ उसी बुनियाद पर इसका एतमाद करूं कि हाँ इसके मुकाबले में कोई चीज़ हो ही नहीं सकती और इसका मुझे कोई फ़र्स्ट हैंड यानी बराह रास्त कोई तजुर्बा नहीं है, कोई इल्म नहीं है, तो फिर मैं किसी और पे एतमाद करके अपने ईमान का सहारा लिए हुए हूँ। कुरान बार बार कह रहा है अफला ताकिरून, सोचते क्यों नहीं, सोचते क्यों नहीं, सोचते क्यों नहीं, और हम कह रहे हैं किसी और ने सोच लिया वो हमारे लिए काफ़ी है। तो इस सेमिनार का मकसद ये है कि वो जो कोर्स मैंने कई साल पहले तैयार किया था, फिर उसके बाद वो एक किताब भी बनी अल्हम्दुलिल्लाह, वो यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाई जा रही है, यहाँ तक कि नॉन मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ में येल में भी पढ़ाई जा रही है कुरानिक स्टडीज़ के अंदर, मलेशिया में भी पढ़ाई जा रही है। इन 10 दिनों में मैं उस किताब का ख़ुलासा आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ और इस एक सवाल का हम जवाब ढूंढ रहे हैं। मैं अपने लिए, मैं आपके लिए भी नहीं, मैं सिर्फ अपने लिए इस एक सवाल के जवाब में ये बात पेश कर रहा हूँ। मेरे नज़दीक कुरान इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं? उसकी कई कई वजूहात हैं, उनमें से कुछ वजूहात का हम अभी जायज़ा लेंगे। तो जो कुरान, जिसको इस कोर्स का नाम मैंने रखा है आखिरी मौजज़ा, आपको पता होगा ना, तो ये जो नाम मैंने रखा है ना, इसके बारे में एक दो बातें पहले समझ लें फिर हम अपना काम आज का शुरू करते हैं। वैसे हम आज बिहाइंड हैं, मेरा मकसद था आज फातिहा के बारे में मुकम्मल बात हो जाएगी, मुझे नहीं लगता कि होगी, लेकिन कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मैं रश नहीं करूँगा, अगर ज़्यादा टाइम चाहिए तो कल कर लेंगे, अगले दिन कर लेंगे इंशाल्लाह, लेकिन मैं मटेरियल को रश नहीं करना चाह रहा। अब मैं चाहता हूँ कि आम आराम से एक एक चीज़ को आप सही तरह से समझें, उसके बारे में सवाल हो तो आपको सवाल पूछने का भी मौका मिले। कुरान के मौजज़े के बारे में एक बात समझ लें, अगर कोई समुंदर में गोता लगाता है, गहराई में उतरता है, वहाँ उसको मोती मिलता है या कोई ख़ास किस्म की मछली मिलती है, और वो निकाल के वो लाता है और कहता है ये देखो मैंने क्या ढूंढा समुंदर में से, और वो ये दावा करे कि असल जो समुंदर का ख़जाना है ना वो मेरे हाथ में है, क्या उसका दावा सही होगा? समुंदर बहुत बड़ी चीज़ है, आप बहुत छोटी चीज़ हो, आप जितने भी गोते लगा लो, पूरी ज़िंदगी गोते लगाते रहो, आपके पास इतने से मोती आने हैं आपके हाथ में, और बाकी कितने लामालूम ख़जाने पीछे रह गए, ना मालूम खजाने, आपको पता भी नहीं, दुनिया को भी नहीं पता। कुरान की मिसाल अल्लाह ताला ने खुद दी है एक समुंदर की तरह की, बल्कि एक नहीं कई कई समुंदरों की तरह। قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا, कह दो कि अगर मेरे कलिमात, मेरे अल्फाज समुंदर की तरह होते, इसकी मिसाल दी अल्लाह ताला ने। अब समुंदर की मिसाल से क्या फ़ायदा हुआ, हम कुरान में तदब्बुर करते हैं जैसे कोई गोता लगाने वाला समुंदर में गोता लगाता है। अगर मैं सारी ज़िंदगी समुंदर के अंदर गुजार दूँ ना अपनी, तो मेरे जिस्म पे, पूरे जिस्म पे कुछ कतरे ही लगे होंगे, मैंने पूरे समुंदर का तजुर्बा नहीं किया, और मैं गहराई में भी उतर जाऊँ तो मेरे हाथ में एक दो मोती आने हैं, 5-6 आने हैं, 500 आ जाने हैं, 1000 आ जाने हैं, मैं कभी ये दावा नहीं कर सकता कि मेरा पूरे समुंदर पर अबूर है या मैं पूरे समुंदर का तजुर्बा कर चुका हूँ और उसमें जो जो ख़जाने थे वो मेरे हाथ में हैं।
ये भी हो सकता है कि कोई और गोता लगाए, उसको कोई और खजाना मिले और मुझे कोई और।